भी जाएं कुर्बान हम सौदा फजाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो नहीं किया ही नहीं मैंने तेरा ना होना कबूल कितने ही गिले और कितने ही शिकवे हम होंगे और कितने मजबूर मैंने आईने साफ किए जाने मंजर के चेहरे पे थी मेरी धूल और ये दोनों हाथ खाली आज भी मुझे कुछ हुआ ना हासिल।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Zelo by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है.
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं.
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
9: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्प लाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान. महकमा सेहत और आबादी हुकूमत पंजाब.
10: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम.

0: FM
1: 100. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: FM 100.
5: One.

0: Pakistan.
1: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
2: ये क्या है भाई?
1: एक, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
4: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात. क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
6: शराय तो जवाबित लागू हैं.
7: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: Sivaj Stone, ek aisa program jo guzashta 17 saal se FM 100 ke listeners ke liye pesh kiya ja raha hai, jisme mahir ilm-e-nujoom Dr. Jaleel Aslam sitaron aur pathron ki roshni mein logon ke

0: तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
1: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
2: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
3: Sivaj Stone, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्म-ए-नुजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333-555-0011।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.
6: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0: Pakistan.
1: Trading, trust me bro.
2: Nice scheme.
3: Committee.
1: Lad baraye faroh.
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
5: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम ज़रूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: दिस इज योर रेडियो ऑन हिट रेडियो

0: This is a produced radio promo.
1: With special effects devised to get your attention.
0: This is where I can tell you what you can win.
1: I'll say it again with effect.
0: What you can win.
1: Now I speed up to emphasize how important it is.
0: A massive big prize, followed by another big prize, and an opportunity to win the overall prize.
2: The overall prize.
1: The overall prize allows you and somebody you know to do something amazing.
0: Thanks to this radio station.
3: This radio station.
0: Big bang to finish the whole thing off.
4: 100 FM. FM.
5: सर इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की.
6: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की.
5: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से.
7: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त.
8: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए शुआबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो. शुआबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद.

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हंजे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: FM 100, ऑलवेज अ बेटर वैरायटी।